को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जैन दैन करके कीती रात, खसम विसारे हैं ते कम जात, नानक नावे बाज सुनात। राग गूजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनों करों गुरपास।

दास गौर मत ना मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जन केवड़ बाग बढ़ेरे जन हर हर शरदार प्यास हर हर नाम मिला त्रिपतास है मिल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जैन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखा लिखास तन तन सत संगत।

हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सरब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखा।

पहला तेत सर्वरण पहले निवासा पाणी पाप गत नहीं किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले।

बन्यवा पही परापत मान कदे हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अब्र काज तेरा कितना काम मेल साध संगत पज केवल नाम सरंजा मिलाग भव जल तरन कै जन्म मृथा जात रंग माया कै राव जप तप संजम

शर्म पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती जा पई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काव आप हाथ द मोहे बचाव सुखी वसै मोरो परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर द करे आए सब बैरन का आवाज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे भरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हू जो सदा हमारे पछा सरी अस्तुर जो कर रक्षा राख लेह मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर

अनकाल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार दसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो।

जे अस्तुज तब सरणी भरे तनके दोष्ट दौत मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सौ टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा हुए ताए सब काला दोष्ट रिष्ट टरंत सकाला कृपा दृष्ट धन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दोष्ट शाश्वत कह न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताही उबारा जैन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष्ट दोख तेरा खड़ग के

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मा देख न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ सरियस बान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तो हे बखाने ओ दोहरा।

पुण्यवान। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका रस आधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होइ उधारो, एहि वास्ता तजी न जाई

तात हर स्वामी तुम ठाकुर हम संगी, जैसी मत देव हो हर स्वामी, हम तैसे बुलग बुलागी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमुख निमुख तुम ही प्रतपाल, हम बारिक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमुख निमुख तुम ही प्रतपाल, हम बारिक तुमरे तारे।

कोट पराध हमारे खंड अल्प विधि समझाव अनक विधि समझाव हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाव तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम

जिनका साधु बेटी है सो दरगा होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन।

0: कष्ट सहे
1: मेरे गुरु पथ में, मेरे गुरु पथ में कष्ट कष्ट सहे,
0: ओ मेरे गुरु पथ में कष्ट कष्ट।

अपने जत्थे समेत श्री दरबार साहब की बेअदबी नूं रोकण लई जा रहे ने। उस समय दे मैदाने जंग दा वर्णन इस तरह है।

दिन ते रात गुण गावा नहीं ते रहन गवाई सोए क्या दिवस गवाया खाए तीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए कौड़ी बदले जा रहे हैं।

मत सब खुद समानी मंदिर सामान तेरे उस दिन अगर न जाना मेरे साहिबा उस दिन अगर न जाना मेरे साहिबा।

तेनु मनुष्या देही प्राप्त होई। गुरु कल की दरपाचा ने बख्शिश की थी, जेड़ा खाका गुरु नानक ने चितरिया, जिस खाके दे विच गुरु अंगद देव पातशाह ने भी रंग भरिया, गुरु अमरदास पातशाह ने भी सेवा का रंग भरिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी शहादत का रंग भरिया, नौ पातशाहियां ने इस खाके दे विच सेवा सिमरन प्यार भावना भर दित्ती। उस सिक्की के रूप में गुरु कलगी पातशाह ने फ्रेम लगा के संपूर्ण कर दिता, सिख का रूप बनाया। प्यार सिखा, तेनू गुरु कलगी पातशाह ने सुंदर दस्तार भी बख्शिश की थी, सिक्की भी स्थान बख्शिश की थी, जिथे पंजे कक्के धारण बख्शिश कीते, रहनी बहनी विच रहण दी प्रेरणा कीती, उथे तेनू साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार सजाउण वास्ते भी ऐ गुरु के सिखा। जदों दस्तार सजावेंगा, दस्तार सजा के जदों तू शीशे दे सामने खलोता होवेंगा, ते मेरे दीदार होवणगे। कितनी बख्शिश कीती, पर अज का सिख उस मालिक नूं भी भुला बैठा, उहदे बचन भुला बैठा। इथों तक दस्तार की जगह टोपी सिर ते पा बैठा, इथों तक कि उहदे बचन भुला के कन्न विच मुंदरां भी पाई फिरदा, ते फिर कहिंदा कि अज गुरु ने मेरी अरदास नहीं सुनी, गुरु ने मेरे कार्य रास नहीं कीते। ओ सिखा, तू गुरु वाल पिठ कर लवे ते गुरु तेरिया झोलियां भर दे, तू मुख कर गुरु वाल, गुरु का बचन का मन। जदों तू गुरु का बचन मनेगा, गुरु तेरिया झोलियां भर देवेगा, तेरे को कुछ लपो के ना रखेगा, तू गुरु के बचन मन, गुरु के पाए पूर्णिया से तुर दस्तार सजा। अफसोस, अज का सिख भुलिया फिरदा, रब का राह छड़ के कुराए राह तुरिया होया। राव भाई, अपने मन में समझाइए, मना आ मनुखा जन्म बार बार प्राप्त नहीं हो, इस समा मिले उस गुरु की बख्शिश हासिल कर, रहनी बहनी विच रहो, पंजा कक्कियां दा धारनी बन, सुंदर दस्तार सजा। जे सिख हो के टोपी पाउंदा तां फिर एक ही बख्शिश, सिख होए फिर टोपी धरै, सात जन्म कुश्ती होए मिल, सात जन्म कौड़ी दा मिलदा जे सिख हो के भी टोपी पावे। सिख दा फर्ज अपने धर्म च रहना, हिंदू है वो अपने धर्म च रहे, गल विच जनेऊ पावे, मुसलमान है अपने धर्म च रहे, पर सिख दा धर्म पंजा कक्कियां दा धर नहीं बन जाना। ते गुरु दी बख्शी सुंदर दस्तार नूं सजा, सिखी रूप पूर्ण धारण कर लै। अज दा मुसलमान कहिंदा मैं सिख बन जावां, दास आ थोड़े दिन होए कुवैती धरती से जदों गए, कुछ दिन कीर्तन कीता, एक मुसलमान जिहदे हिरदे विच भावना प्यार बड़ा, गुरु के दर से आउंदा, सेवा करदा, सिमरन करदा, कीर्तन सुनदा, निता पर नियम है। पर जदों दास वापस आउण लगे ते उसके नेत्रों में जल वहन लग पिया, हाथ जोड़े भाई साहब जी आप जा रहे हो, मेरे वास्ते एक अरदास कर जाओ। मैं उस मुसलमान वीर वाल तकिया, ख्याल आया अज का मनुख दुखी है, हो सकता है इसनू भी कोई दुख होवे, इस वास्ते चाहुंदा कि गुरु के चरणों में अरदास कर जाए,
पुछिया पलिया की दुख है, किस वास्ते कहीं ने अरदास करो। हाथ जोड़े पाए साहब, मैंने कोई दुख नहीं है, मेरी एक इच्छा है कि मैं सिख सज जावा। भाई साहब आ तीन बार मैं केस रखे पर मैं सिख ना बन सके, मेरे केस कतल कर दिते गए क्योंकि मैं मुसलमान हूं। कुवैती करती दे रही है, पर इस वास्ते भाई साहब मैं तुहाडे चरणों में एक अरदास करदा कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के चरणों में अरदास करो कि आ जन्म तो बाद मेरा अगला जन्म सिखां दे घर होवे ते मैं सिख बन के गुरु कलगीधर पातशाह का अमृत छके पंजा तकियां का धारनी बन के ते सिख हो जावा, फिर मेरा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। मेरा दिल करता है कि एक बार अमृत छक लो। एक मुसलमान वीर की भावना है सिख बनन की, अमृत छकन की, कि अज का सिख कदे झात मारी, अज का सिख नाइया की दुकाना से बैठा है, वो चाहता है कि मैं केस कतल करा लवा, केसा की विद भी करता है। अज तकिए मेरिया भैन भी केसा की बेद भी कर दी है। मैं उन्होंने भैनों भी बेनती करा, उन्होंने वीर भी बेनती करा, आओ भाई जे तुम सिखा दे घर जन्म मिले है तो इस विरसे में संभाल लीए, आओ भाई पूर्ण हो जाइए। जो पूर्ण हो जावे दस्तार सजावे, गुरु की सिक्खी जो गुरु ने बख्शी है इसनू गहना मन के हंडावांगे ते फिर गुरु बख्श करेगा, झोलियां भर देवेगा। आओ फिर अपने मन नू समझा लईए, ए मंजिल दूर बथेरी जो मिलदी ना हर वेली। हर वारी तां ए मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त होना, तेनू ए दात प्राप्त होईए कि हुण रहितां विच रह, बख्श हासिल कर, इस सिक्खी नू गहना मन के हंडा। अज वे बीबियां गहना पाउंदियां किस वास्ते, अपने शरीर को सिंगार दिए, अपने पति को खुश करने वास्ते। ते आवे सिखा तेरा भी पति ओ परमात्मा, तू भी उन्हें खुश कर, अपने शरीर से आ गहना पंजा टक्कियां दा धारनी बन, अपने गुरु नू मना लै, अपने गुरु नू खुश कर लै कि बार बार दात प्राप्त नहीं होनी। ते आप एक बार मन नू समझा लीए।

क्यों दिन रात इन्हां नशियां विच गलतान होए, क्यों अपना आप अजाई गवारे, आ नरकां दा राह अपना बैठे। दिन रात इन्हां नशियां विच गलतान होए, ये नशे एक दिन शरीर नूं खा जांदे, एक जन्म अजाई गवा जाने, एक शरीर नूं मिट्टी विच रोल जाने। इसे वास्ते भाई साहब कहिंदे, कुट्ठा हुक्का चरस तमाकू गांजा टोपी ताड़ी खाकू, इनकी ओर ना कबू हूं देखा, रैतवंत सो सिंह बसिख है। ओही ओ सिख रहनी बहनी विच है जिहड़ा भुल के भी इन्हां नशियां दे नेड़े नहीं जांदा। पर अफसोस अज दा सिख तां दिन रात नशियां विच ही गलतान है। बड़िया सुंदर कोठियां होंदियां, जदों जाके तकी दा बड़िया कीमती बोतलां लगियां होंदियां। इस वास्ते कि जिहड़ा साडे घर आवे तके, ये सेठ है, बड़ा वड्डा सरदार है, हर तरह की कीमती बोतल इसके घर लगी हुई। अफसोस सानू शराब दी बोतलां ते माण रहा, सिक्खी ते माण ना रहा। और सिखा किते शराब की बोतल की थां वो गुरु बख्श की कोई निशानी तेरे घर लगी होगी, कोई श्री सर लगी होगी, तब कह सकता सी कि मैं सिखा हाँ, बोतलों का मान करता। तो फिर कहना गुरु मेरे से बख्श नहीं करता, भुलिया तो तू आप फिर गुरु तो दूर होता फिर। वो सिखा गुरु का वचन मन दस्तार सजा। एक सरदार मिलिट्री का सरदार है, गुरु रामदास पातशाह के दरबार में इशनान किया, दस्तार सजाई, पर जदों दाड़ा बनन लगा, एक 8-9 साल का बच्चा सवाल कर दिता, ऐ सरदार जी आ की लपेट रहे हो? बेटा मैं दाड़ा बन रहा, दाड़े नूं लपेट रहा। कहन लगा नहीं, ये दाड़ा नहीं, ये की लपेट रहे है? ओ बेटा मैं दाड़ा लपेट रहा। कह लगा सरदार जी ये दाड़ा नहीं, ये सिखी का निशान साहब है जिन्हों लपेट रहे हो। जिस कौम का निशान लपेटिया जाए वो कौम भी लपेटी जाती है। जिस कौम का आ निशान साहब ही लपेट गई है, कौम लपेटी गई, ये तो लहराउंदा ही चंगा लगता है। और सरदार के नेत्रों में जल वहन लग गया। एक 8-9 साल के बच्चे ने सवाल किया।

बस मन बदल गया, दाड़ा खोल देता, प्रकाश कर देता। आओ भाई, बस किसे किसे बच्चे की गल भी कई बार तीर बन के लग जाती है। आओ जे सचमुच गुरु दे हां ते फिर आ बचन गुरु दे हां। सुंदर दस्तार सजा अपना सुंदर दे दाड़ा प्रकाश कर ते गुरु दे दर से नमस्कार कर। रैणी बहनी विच रहो इन्हां नशियां दा त्याग कर, फिर गुरु बख्श करेगा तेरियां चोरियां भर देवेगा। आ भाई मन नूं समझा लईए। ए सिर गट पान तमाकू खुप जांदे बण के चाकू, ए सिर गट पान तमाकू खुप जांदे बण

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
4: Ram Kali Mahalla Panjwa Kar Sanjog Banai Kaash Kis Sang Raheo Iyana Raach Rit Paare Nit Saar Samhare Ant Ki Baar Uth Sadare Naam Bina Sab Chuth Parani गोविंद भजन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ परानी रहाओ तीर्थ नाहे ना उतरस मैल कर्म धर्म सब हों मैं फैल लोक पचारे गत नहीं होए नाम विहूणे चल सहरोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सोधे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपै जिसे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे राखो आप सगल सुखा।

प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का संग पया रहाउ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई भला जह राखै सोई मुक्त स्थान जो जपाए सोई नाम अठ सठ तीर्थ जह साध पग धरह तह बैकुंठ जह नाम उच्चरह सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित हर गाईए आपे घट घट रहे आपे आप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमुख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहन ना जाई रहाउ सूर वीर धीरज मत पूरा सहज समाध तुन गहर गंभीर।

कर्म कांड अहंकार ना काजै, कुशल सेती घर जाहे पंडित रहाउ। हर का जस निद लिया लाभ, पूर्ण भये मनोरथ साभ। दुख नाथा सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिजसाया। नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान। संतोख आया मन पूरा पाए, फिर मांगन काहे जाए। हर की कथा सुनत पवित्त, जेवा बकत पाई गत मत। सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवां, गौ कर पकड़ी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओह चरणी आए पई, सुन संत हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उधार। रहाउ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे।

कई गलान साध के संग मन तन रातो हर कै रंग राखे राखन हार दयाल ना किस सेवा ना किस काल कर कृपा प्रभ की दया बूढ़त दुख मह काड लया सुन सुन उपजियो मन मह चाओ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत परम गत पाई गुर प्रसाद नानक लिवलाई राम कली महला पंजवां।

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सहराचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुर पूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार, राम कली महला पंजवा, रतन जवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ टूट ना आवै, अंत नहीं हर पारा वार रहाऊ, कीर्तन निर्मोल कहीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी पूंजी, सुन संवाद गुफा तह आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन, भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर धन पाया, दयाल पुरख ना

ब्रह्म में नहीं जान भेद अवतार ना जान अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गत आप जान सुन सुन अवर बखान रहाउ संकरा नहीं जान भेव खोज तहारे देव देवियां नहीं जान मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरै आपे मेल एक परमे एक भगती ला।

तिस पुन ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप। राम कले महला पंजवा, किसू काज न कियो जान, सुरत मत नाही किस ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म, किसू न जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा

अपना आप सगल मटाए, मन चिंदे से फल पाए। हो सावधान अपने गुर स्यों, आस्था मनसा पूर्ण होवे, पावे सगल निदान गुर स्यों रहाओ। दूजा नहीं जाने कोई, सतगुर निरंजन सोए, मानुख का कर

हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उदरे गुण गाए, गणन ना जाए कीम ना पाए, बूढ़त लोहो साध संग तरै, नानक जिसे प्राप्त करै, राम कली महला पंजवां, मन माहे जाप भगवंत।

0: तृष्णा भूख सब नासी, संत प्रसाद जपया अबनासी, रहन दिनस प्रभ सेव कमानी,
1: प्रभ मिलने की यह निशानी,
0: मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल, गुर का दर्शन देख निहाल, परा पूर्वला कर्म बन आया, हर के गुण नित रसना गाया, हर के संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान, दास की रेण पाए जे कोए, नानक तिसकी परम गत होए, राम कले महला पंजवां, दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय धर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेट मिटे अभमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ, गुर की कीर्त जपिया हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे न व्यापै तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोबिंद पढ़दे सब काजे।

नानक दास तिस पूर्ण भागा राम कली महला पंजवां इस परवासै बिच रह भवन मूड़ मुगद तेरा संगी कवन राम संगी तिस गत नहीं जानै पंच बटवारे से मीत कर मानै सो कर सेव जित उदरह मीत गुण गोविंद रवियह दिन राती साध संग कर मन की प्रीत रहाओ जन्म बिहानो अहंकार अरवाद त्रिपत न आवे बिखिया साध परमत परमत महा दुख पाया तरी न जाई दुत्तर माया काम न आवे सो कार कमावे आप बीज आपे ही खावे राखण को दूसर नहीं कोए तो निस्तर जो कृपा होए पतत पुनीत प्रभ तेरो नाम अपने दास को की जय दान कर कृपा प्रभ गत कर मेरी शरण गही नानक प्रभ तेरी राम कले महला पंजवा एह लोके सुख पाया नहीं भेटत धर्म राया हर दरगाह सो बावंत हुन गर्भ नाही बसंत जानी संत की मित्राई कर कृपा दीनो हर नामा पूरब संजोग मलाई रहाओ गुर कै चरण चित लागा तन तन संजोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे किल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डीठा नाम प्रभु का कट कट बूठा मिटाने सब कल कलेश जिसते उपजे तिस मह प्रवेश प्रगटे अनूप गोविंद प्रभ पूरे नानक बख्शिंद राम कले महला पंजवां गऊ को चारे सार दूल कौडी का लख हुआ मूल बकरी को हस्ती प्रतपाले अपना प्रभ नजर निहाले।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ठ हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्ननवारी सतगुर देव, सेव के अपनी लायो सेव, कीर्त कणा का करे।

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बखशिंद रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रगटियो सब तान प्रेम भगत जोरी सुख मान सागर तरियो बासर खोज छेद ना पायो नह फुन रोज सिंध समायो कटके माही करनहार को किस अचरज नाही जो छूटो तो जाए पयाल जो काडे हो तो नदर निहाल पाप पुन हमरे बस नाही रसक रसक नानक गुण गाए राम कली महला पंजवा।

काम क्रोध मद सद ही चूरे करे बिकार जियरे कहताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तो हो अनक छल जान कौडी कौडी को खाक सिर चान जिन दिया तिसै न चेतै मूल मिथ्या लोभ न उतरै सूल पार ब्रह्म जब भये दयाल इह मन होआ साधरवाल हस्त कमल।

जहाँ कह राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसका मस्तक हाथ गुरत

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक वो सी भी सच कहां तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तुम्हारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी

नानक प्रभु शरणागति राखण को समरथ तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा

ਦਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਬਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੀਸਰ ਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਬਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਈ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤੈਸੋ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇ ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਸਤਬੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਬਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਏ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਭਾਵ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਵਰਮਾ ਇੰਦ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨੁਮੰਦ। ਸੁਣਿਆ ਯੁਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਭਾਵ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਤੋ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਭਾਵ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਸਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਭਾਵ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਈ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਵਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰ ਤੋ ਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈ। ਮੰਨੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਈ। ਮੰਨੈ ਮਗਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸਿਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨਾ ਭਿੱਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦੁਰਗਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੂਹੈ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇ ਕਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਗਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਇੱਕੋ ਕਵਾਉ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾ ਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਖਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੀ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਪਖ ਖਾਹੀ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ।
असंख मूर्ख अंधकोर संख चूर हराम कोर संख अमर कर जाही जोर असंख गलबड़ हत्या कमाही असंख पापी पाप कर जाही असंख कूड़ियार कूड़े फिराही असंख मलेश मल पख खाही असंख निंदक सिर करहि भार नानक नीच कह बिचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव संख थाव अगम गम संख लो असंख कह सिर पार अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन्हें लिखे तिस सिर नाए ज फरमाए तिब तब पाए जेता किता देता नाओ बणनावै नाही को थाओ कुदरत कवण का विचार वारा न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार परिया हथ पैर तन दे पानी तोता उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुण लिया उतोए परिया मतवा पांकै संग तोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करणा लिख लै जा आपे बीज आपे ही खाह नानक हुकमी आव जा तीरथ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाऊ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मन आही कोए बिन गुण कीते भगत न होए सुअस्ताद बाणी बरमाऊ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सवेला वक्त गवण कवण सित गवण वार गवण सिरुति माह कवण जित आकार वेल न पाई पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाही कीता जा कह होवै नानक जे कह आप जाने अग गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहनक दे बास लू एक धात लेखा होए त लिखी है लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप साला ही साला है ती सुरत न पाईया नदियां तै वाह पवै समुद्र न जानिए समुद सा सुल्तान गिरह सेती माल तन कीड़ी तुल न हो बनी जे तस मनो न विसरै अंत न सिवती कहण न अंत अंत न करना देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै कै मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा वार अंत कारण के ते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे एह अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ ए बड़ ऊंचा होवै कोए ते सूचे को जाने सोए जे बड़े आप जाने आप आप नानक नदरी कर मिंगात बहुता कर्म लिखया न जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगे जो दया पार केतिया गणत नहीं बिचार केते खब टै बेकार केते लै लै मुकर पाए केते मूर्ख खाई खाए केत्या दुख पऊ सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणे होए हो राख न सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओ जाने जे तिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे आख है सेबे गई के जिसनों बख्शे शिवद सला नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण मुल वापार मुल वापारी मुल भंडार मुल आवह मुल लै जाए मुल भाई मुला समाहे अमुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल प्रवाण अमुल बख्शीस मुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान अमुलो मुल आख्या न जाई आखा करे लिबलाई आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करे वख्याण आख हे ब्रह्मे आख अंध आख हे गोपी दै गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख केते गीते बुद्ध आख हे दानव आख देव आख हे सुर नर मुन जन सेव केते आख हे आखण पाए केते कह कह उठ उठ जाए एते गीते होर करे दाख न सकै गई के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने सच सोए
जे को आखे बोल बिगाड़ू ता लिखी असर गवा रंग वार सोदार केहा सो कर केहा जितवा सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वा बनहारी केते राग परिसं कही अन केते गावन हारी गावे तो न पौन पानी बसंत गावे राजा धर्म लवारी गावे हैं चेत गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारी गावे इंद दसन बैठे देवते अंदर नाले गावे सद समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सदी संतोखी गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे है मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावे है जोध महाबल सूरा गावे काणी चारी गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारी सही तुदन गावे है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच ओ साहेब साचा सच नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन ओ पाई कर कर वेखा गीता प्रणाम जब तस दी वड्याई जो तस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाम पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पद जोड़ी ध्यान की करें बिपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत है जग जीत आदेश स आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड़ बाजे नाद आप नाथनाथी सब जां कीरत सदेवरा साध संयोग वियोग द्विकार चलावें लिखे आवें भाग आदेश स आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पास एका बार कर कर विख सरजनहार नानक सचे की साची कार आदेश स आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेश एका माई जुगत व्याई तन चले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब तस पावे तवै चलावे जब हो वह फरमान ओ वेखै ओ ना नजर ना आवै बहुत आहे बडाण आदेश दस आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पास एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सचे की साची कार आदेश स आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेश एक दूजी पौ लख हो है लख वै लख वीस लख लगड़ा खिया एक नाम जगदीश इतरा पत पवड़िया चढ़िया हो कीस सुन गला आकाश की गीटा आई रीस नानक नदरी पाई है गूढ़ी गूढ़ा ठीस आखण जोर चुपैन है जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राति रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल दिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जगत के रंग दिन के नाम अनेक अनंत गर्मी गर्मी होई विचार सुचा आवस सुचा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवाण नदरी करम पवनी साण कच पकाई उथै पाए नानक गया जप जाए धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म केते पवन पाणी बसंतर केते गान महेश केते वरमे काड़त कड़ी है रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते सदबुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरेंदु केतियां सुरदी सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड दिथै नाथ विनोद गोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप दिथै काड़त कड़ी है बहुत अनूप ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਤਥਾ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦਿਸੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਸ ਦੰਗ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਦਿਸੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
तथा जोध महाबल सूर जन्म राम रहया भरपूर जिथा सीतो सीता मैं ममाहे दाग रूप न कथने जाए ना हो मरहे न ठग जाहे जिनके राम बस मन माए तिथे भगत बस के लोह करे आनंद सच मन सोए सच खंड बस निरंकार कर कर वेख नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथा दंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकुम दिव दिवकार वेख विषय कर विचार नानक कथना करड़ा सार जद पहारा दीर जिस निहार अहरण मत भेद हथियार पाओ खलागन तब दाओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता दर्त महत दिवस रात दाई दाया खेल सगल जागत चंग आईया बुरे आईया वाच धर्म हदूर करमी अप अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकद काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकद काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओम जाप साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाग पातशाह दसवीं शपै छंद दल प्रसाद चक्कर चेह नर वरन जात अर पात नहन देह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूर्त अन पाव प्रकाश सिमित उज कह जय को टिंद्र निरान सा सहन गण जय त्रिपवन महीप सुर नार सुर नेत नेत बण तृण कह तू तब सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग काले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग ठाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग शेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारी नमस्तंग पारी नमस्तंग सुहेक नमस्तंग अनेक नमस्तंग भूते नमस्तंग जूफे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निर्भरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरदाते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अतापे नमस्तंग त्रमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगम्य नमस्तास्तरम्य नमस्तंग जलाश्रय नमस्तंग निराश्रय नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग मजबे नमस्त जबे अधेसंग अधेसे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्भामे नमो सर्वकाले नमो सर्वध्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तास्तदेवाय नमस्तंग पेवाय नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुभानमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपावणे नमो सर्वरंगे दर्भंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तास्त दयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग करतारंग नमो सर्वतंदे नमो अस्तबंदे नमस्तंग नरसाके नमस्तंग नरभाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तास्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखंग नमो सर्वभोगंग नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले जाचरी छंद तव प्रसाद अरूप है अनूप है जूह है पूह है अलेख है पेख है नाम है काम है अदेह है पेय जीत है पीत है द्रमान अनदान है द्रवर्ग है सरगय अनिल है अनाद है अजय है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है वर्ण है गांजा पांजा जूझा जांझ है अमीघ रवीघ दंध है बंध है नरभूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है जहा अनंत है महंत है अलीख है नरसरीख है निर्लंब है सम है
अगम है जम है भूत है शूद है अलोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है भागाय मानन दानन कैपरी कै पुजंग पर्याद शंभ नमो सर्वमान्य समाज दिन दाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व गौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो बन पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो बन पाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो बन पाने नमो बद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे ब्रभंगी परमाथे समाधि बभूते कलंक कलंक बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो योग योगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम हृदय नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र पाणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अभेक्षीय परमीय भोग्य भुगते नमो योग योगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशांग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संगशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणाशी अनूपे अनूपे समाज तुलनेवासी सदा सदा बुद्ध दृद करता अदूर दर्दंग गंगो करता पारंग परम परमेश्वरंग प्रोज पालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशदीय भेदीय नाम कामंग समाज सुभराजी समाज दास धामंग तेरा जोर चाचरी शंभ जले हैं थले हैं पीता वे हैं प्रभु अजुआ दे सह पे सह पुजंग प्रयाद शंभ अगा देवा दे रंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज दिन दाने नमा स्वंग नरनाथे नमा स्वंग परमाथे नमा स्वंग गंजे नमा स्वंग पंजे नमा स्वंग काले नमा स्वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वभीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वयंत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वगुरिष्टंग नमो सर्वरंगे तृपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजय पिजय समातंग प्रसिजय कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धिंग निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल शांत दग प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त योन पुरख पारो सर्व मंत्र मन देव पेवा दुदारो सर्व बालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र वराजी अवधूत रूप प्रसाल नाम ठाम न जात जा करु ब्रंग न रेख आद पुरुष उदार मूर्त जो नाद सेख देश और न पेस जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा बेसा हो फैले अनुराग नाम काम विहीन पेख तव दाम हूं न जाहि सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन अकीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अंत कबर एक देव पेब न जानी जेब दर्क देव रूप रंग न जात बात सो जानी कह जेब तात्मात न जात जाकर जन मरण विहीन चकर बकर बिर चतर जाक मानी प्रतीन लोक चौदांग के बिखय जग जापी जह जापु आदि देव अनाद मूर्त थाप्यो सर्व ज थाप परम रूप प्रनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व सुरच्यो सुयम पव सुभंग सर्व सुरच्यो सुयम पव कणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूतल कपेश अंग राग न रंग जा कै जात बाधना नाम गर्भ गंजन दोष पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी कानो सद एक पुरख बतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंग ही न भंग अनात्म एक पुरख पारु सर्व लायक सर्व गायक सर्व गोप्रत पार
ਸਰਬਗੰਤਾ ਸਰਬਹੰਤਾ ਸਰਬਦੇ ਅਨਪੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਨੀ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਦੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਬ੍ਰਾਣ ਜਾ ਕਹੇ ਨੇਤ ਭਗਤ ਨਿਤ ਗੋਟ ਸਿਮਰਤ ਬ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਈ ਬਹੁ ਚਿਤ ਮਦ ਪਾਰ ਛੰਦ ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਧਾਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਾਰ ਵਾਸਨ ਬੰਗ ਮਾਨ ਅੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਰਜਨ ਅਨਾਸ਼ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ਾ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਨ ਪਾਨ ਦੇਵਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਨ ਬਾਲ ਰੰਗ ਕਾਲ ਰੰਗ ਕਾਲਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਪਾ ਭੰਗ ਗਤਮਿਤ ਪਾਰ ਗੁਣਗਨ ਉਧਾਰ ਮੁਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈਨ ਕਾਮ ਅਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਅਲਿਸਿਆ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸਿਆ ਧਰਮ ਸਰਬ ਪ੍ਰਣਾਡਿਆ ਅਣ ਡੰਡ ਵਾਢਿਆ ਇੰਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਅੰਗ ਕਰੀਅੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਕਾਮੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨੇ ਆਏ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਆਏ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸਤਰਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾ ਭਰਮੰਗ ਨਾ ਪਿਤਰਾ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਕਾਹੀ ਜਨਮੰਗ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਿਤਰਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਭਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰਾ ਪ੍ਰਥੀਸਾ ਦੀਸਾ ਦ੍ਰਿਸਾ ਕ੍ਰਿਸਾਏ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਚ ਦੇਸਾ ਕਿਹਾ ਬਿਜ ਬੇਸਾ ਕਿਹਾ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਪਰਮੈ ਕੇ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਤ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਵਰਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਏ ਕਿ ਧਰਮੰਗ ਤੁਜਾਏ ਕਿ ਅਸੋਕ ਵਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਵਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਆਦੋ ਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਵਿਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾ ਕਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਬੁਲ ਗਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਗੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰਗ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਦਰ ਮਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਦਰ ਦਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਦਰ ਗਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਦਰ ਪਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਬੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਬਾਹ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਬੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਬੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਆਏ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੰਗ ਫੀਮ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲੋ ਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੋ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਲੀਖਤ ਮਦਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬਲ ਸਕਸਤਾ ਗਰੀਬਲ ਬਰਸਤਾ ਹੈ ਬਲੰਦਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾਨ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮ ਹੈ ਰਜੂ ਉਲ ਨਦਾਨ ਹੈ ਹਰੀ ਫੁਲ ਅਜੀਮਰ ਜਗ ਜਗੀਨਾ ਨੇਕਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦਾ ਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜ ਨਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮਲ ਫਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਮੁਕਤ ਬਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੁਭ ਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵ ਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਵਾਸ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗਾਹਦ ਅਨੂਪ ਹੈ ਉਵੰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾਸ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਭੰਗੀ ਤ੍ਰਕਾਮੇ ਸਰਵਰਗੰ ਤਰਵਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਭਾਗੇ ਸੁਸਰਬਾਨ ਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਜੈ ਸੂਦੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਮੇ ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਮੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਨੰਗ ਹੈ ਬੇਖਾ ਲੇਖਾ ਪਰਮਾ ਕਰਮਾ ਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਬਹਿ ਭੂਤ ਹੈ ਦੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੰਦ ਹੈ ਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਗਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਲਿਖ ਦੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਟਾਹ ਗਾਏ ਅਸੰਭ ਹੈ ਗੰਭ ਹੈ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ ਨਿਤ ਸੁਨਿਤ ਜਾਤ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਦਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰਗ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰਗ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰਗ ਸਰਬੰਗ ਕਰਮੰਗ ਸਰਬੰਗ ਧਰਮੰਗ ਸਰਬੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰਗ ਮੁਕਤਾ
रसावल शांत तक प्रसाद नमो नरकनाशे सदा भंग प्रकाशे नंगंग स्वरूपे भंगंग भूते ब्रह्मादंग ब्रह्माते सदा सर्वसाधे एकाद स्वरूपे निर्बाद भूते नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे नरभंगी स्वरूप सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाता न माता न जाता न पाता नरसागंग श्रीगंग तोमी गाय सदैव प्रवाह जय जाय भगवती शांत दग प्रसाद के जार जूर है के हाजर हजूर है मेसर सलाम है समाज सुर कलाम है के साहब दिमाग है के उदन जरा गए के कामल करीम है के राज करही मैं के रोजी रहंद है के राज ग्रह है करीमल कमाल है के उसन जमाल है करीमल खराज है करीमल निवाज है हरिफुल सिकान है रास रिप कान है कलंक प्रणास है समाज तुल निवास है कंजल गुनीम रजाय करही मैं समाज तुल जवा है के साहब ग्रह है नरक प्रणास है बैस तुल निवास है हे सर्वलोकवान है मे सुलरवान है तमाम तमीज है समाज तुलजीज है परंग परमीश है समाज तुलजीज है आदेश लेख है मे सुलेख है जमीनो जमा है कि नीम कमा लें गिजरो जमा लें गचलंग प्रकाश है मित्र मित्र बसा है कि आत्म प्रभाए कि अचलंग नांग है कि मित्र पंग है मत पार छंद तक प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम हर भर गंज हर नर पर पांज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंड अन पवय नाश त्रैत दर दुरास आजान बाह अन पवय नाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल सल मधाम अंश जे अंग आसन पांग उपमा पार गतमित उदार जल थल मांडो देश बेसया पांडो जल थल महंत देश बेस बेअंत अन पवनाश त्रैत धर तुरहास आजान बाह एक कैसदाह अंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरु भर अकाल कर कर प्रणाम चरण नाम अंश जगात अज जिन बात अंश अंजगात अंदरंज बात अं टुट भंडार अंठ अट पार आठीठ धर्म आतटीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद दव प्रसाद करणालया है हर कालया है कल खंडन है मह मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड से है कलखंड है परदे पर है करुणा कर है जपा जपा थप थप है अकृता कृत अमृत अमृत है जपा कृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है कृता कृत तरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत है अजबा कृत है मृत अमृत है निर्नायक है कलकायिक है विश्वम पर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायिक है पाव पंजन है अर गंजन है रपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयादिशंग नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारी नमो तेजे नमो नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह ताम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो भंग भंगे अभंगे रूपे नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगे अनंगी कामे एक आशरी संग अजय अलय अभय भय भुवजू अनाश काश गंज भंज लख पख काल दयाल लेख पेखो नाम काम का डाना ते ब्रह्माथे जो नियमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग बर्मंग गंजे लेखे भुजंग प्रयाद शंभ नमास तुल प्रणामे समाज तुल प्रणासे अगंजल नामे समाज तुल निवासे रगामंग बभूते समाज तुल स्वरूपे गोकर्मंग प्रणासी सर्व भूते सदा अंग संगे अपंगंग भूते
ਕੋ ਕਰਮੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੀ ਸੁਧਰਮੰਗ ਬਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਗਨੀਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬਭੂਤੇ ਅਜਾਇਬ ਗਨੀਮੈ ਹਰੀ ਅੰਗ ਕਰੀ ਅੰਗ ਕਰੀ ਮਦਰ ਹਿਮੈ ਜਦਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਜਦਰ ਚੱਕਰ ਭਭੂਤੇ ਸੁਯੰ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਬਭੂਤੇ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰ ਭਵ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਬਭੂਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਦਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸਦਾ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਬਣੇ ਕਮਤੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤ ਗੌਰ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਉ ਤੇ ਕਰਤਿ ਵਿਨੇ ਕਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਕੋਟ ਤਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੁਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਭਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਬਲੀ ਵੇਦ ਨਿਆਬ ਸੀਸਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਭਏ ਦੁਕਾਨ ਭਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾ ਗਈ ਪਾਏ ਪਦਾਰੀ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਬਦੇ ਸੁਦਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਦਾ ਹੈ ਅਜਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਗੌਨ ਗਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਸਰੀ ਪਾਤ ਸਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਉਦੈਤ ਮਦਾਨ ਸੁਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਸੇਖੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਦੇਵ ਕੁਰਾਣ ਜਮੀਨ ਜਵਾਨ ਸੁਬਾਨ ਕਵੇਖੈ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਦੀ ਜਦਾਰ ਸਭ ਸੁਭ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੇਖੈ ਸਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੁਪਤ ਇਕ ਰਤੀ ਬਨੇਕ ਨ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸੁਭਾ ਦੁਰੰਤ ਦਵਾਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਬਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਪਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰੁ ਪਰਵਤ ਮਾਖਲ ਨਾ ਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਹਰੀਨ ਮਰੋਰਮ ਵਾਸਨ ਮਾਤਿਵ ਨੰਗਨ ਮਾਨਵ ਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਧਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰ ਗਿਦਾਰ ਬਸ਼ਈਆ ਤੋਰ ਤਦੇ ਸਮਲੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨਵ ਲਈਆ ਗਾੜੀ ਗੜਾਨ ਕੋ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੁਭਤਨੀ ਜਗ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਦਾਨ ਵਦੇ ਫਿਰਨ ਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਗਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਸਲਮੈ ਪਲੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਦਪੈਂਗੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਵਾੜ ਜੈਤ ਤੁਨ ਬਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਦਰ ਸਭ ਆਪ ਲੋਕ ਜਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਗਜੇਂਦਰ ਨਰਾਤਪ ਜੋਂ ਤਰਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੰਬਰ ਸਾਜ ਭਰੇਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਰੀ ਪਦ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਪਾਸ ਭਰੇਂਗੇ ਜੇ ਨਾਰ ਸਰੀ ਪਦ ਕੇ ਬਰਸੈ ਪਾਗ ਦੇ ਨਾਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਤਰੇਂਗੇ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਦਉ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਭਗਤਾਂ ਲਗਾਇਓ ਨਾਥ ਫਿਰਿਓਲੀਏ ਸਾਧ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਆਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀ ਵਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਐਸੇ ਸੁਭੈਸ ਵਧਾਇਓ ਸਾਜ ਕਾਮ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਤਰ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਵਾਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਿਛਾ ਕੋਸੀ ਸੁਣਵਾਇਓ ਕਹੂ ਬਤਾ

कौ बुतान को पूजत है पास कौ मृतान को पूजन तायो कूर करया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए जत की इच्छा ताब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत बारा हमरे दोष सब तुम काबो आप हाथ दे मोहि बचाव सुखी वसै मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे आए सब बैरन का आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आशा दूर भजन की रह प्यासा तुम झाड़ कोई अवर न त्याऊ जो वर जाऊं सुदम दे पाऊं सेवक सेख मारे दारी है जन जन सतर मारे मारी है आप हाथ है मुझे भरे आए मरण काल का त्रास ने भरे आए हूँ जो सदा हमारे बचा शरीर तरजू करे और अच्छा राख ले हम रखनहारे साहेब संत सारे प्यारे दीन बंद जश्न के हंता दमह बुरी जगदंता काल भाई ब्रह्मा बबधरा काल भाई शिव जी उधरा काल भाई गर्भ सिंबर का सा सगल काल का किया तमाशा जबन काल से जगत बनायो देव ज्ञान जिसने बजायो आदि आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा रा सेवकन को सेव गुण सुख दियो सदर को बल मवद कियो वाहेगुरु के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाई ते दुखी सुख पाई साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कर कट के पट पट की जाने जा बुद्ध कर करा कर तारा पर जा दर्त तब दी अपारा जा बया करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा तंदरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील नाद सांभ ताका मूडो चारद भेदा जागो बेब न पावत भेदा जागो गर्भान अनुमानत महामूढ़ का भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेबु निरंकार का चीणत न पेबु आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पैन पैन तो है तेती तुमरा लखा न जाय पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुप सुरूपा रंग भयो राव कई भूपा अंडज जेरज सिद्ध जकीनी उत्पज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम पब आदि जगाद स्वरूप सुजम पब अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दोष जिते उठ मत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे कन के दोष दुख हव मरे पुरख जवन भग भरे तिहारे दिन के तम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याए हैं जाके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा हुई ताए सब काला दुष्ट रेष्ट डर है तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि नहर हो जाके ताप तनक हरे हो रिद सद कर्म सब होई दोष शास्व सके न कोई

खड़ग केत में शरण तिहारी आभा जल उबारी सर्व ठावर महो सहाई दुष्ट दुख तेरे उपजाई। खड़ग केत में शरण तिहारी आभा जल उबारी सर्व ठावर महो सहाई दुष्ट दुख तेरे बचाई। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बनियाइयां। शब्द तां गावो हरि केरा मन जिने बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदर हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विस्तारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदर हरनाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुखों वसया जिन इच्छा सब बजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु टो जिस दियां ये बड़ियाइयां कहे नानक सुनो संत शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा धारो। वाजे पंच शब्द तित कर सभा गए कर सभा गए शब्द वाजे कलाजित कर धारिया पंच दूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया। तोर कर्म पाया तुद जन का उसे नाम हर कह लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कार्या न दवाजे। साची लिवै बन देन मानी लिवै वाजों क्या करे बेचारिया तुद बस रात कोई नाही कृपा कर बनवारिया।

नेमख नेमख तुम ही प्रतपाल हम बारिक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे नेमख नेमख तुम ही प्रतपाल हम बारिक तुमरे तारे जिहवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कन्ही लही रहा कोट अपराध हमारे खंड हो अनक विधि समझाव हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाव तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हर दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हर दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नागे फिर है जंग, विस्माद पौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि छेदे विडाणी, विस्माद धरती, विस्माद

सतगुर पेटे सोस पाए हर का नाम वसाए नानक नजर करे सो पाए आस संदेश तेने केवल हम शब्द जलाए पड़ी भगत मन।

0: किछ करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग सदन ज्ञान सदन वेद सदन ब्राह्मण है खत्री सदन सूर सदन।

तो टिटकते जप माली तान मले छखाय अंतर पूजा पड़े हैं कते बसन जम तुरका पाई।

ਅਣਖ ਸੁਣੈ ਚੰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੂਟ ਪਾ ਪਰਹਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਉ ਸੁਖ ਨੇਰੇ, ਸਖਤ ਸਿਚਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਤਰੈ, ਅਣਖ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਚਿਕ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਮਾਰ ਗਿਓ ਜਾ ਚਕੇਲਾ ਤੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋ ਸੁਹੇਲਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਝੂਠ ਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲਖਵਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਣਖ ਬਿਗਨ ਜਾਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਅਣਖ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪ ਪਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲੈ ਮਲ ਕਬੂ ਨਾ ਸੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਹੋਵੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੂ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾ ਸੰਗ ਸੋਸਾ, ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮਾਂਦ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੀਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ, ਜੈ ਮਹਾਂ ਪਿਆਨ ਤਪਤ ਵੋ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਾ ਤਿਰਕਾ ਮਨ ਸੁਜਿਆ ਕਰਕੇ ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤ ਹੈ, ਭਗ ਜਨਾ ਕੀ ਵਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੈ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਦਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਆਖੁਦ ਸਾਧ ਕੁਮਾਤ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਨਾਮ, ਜਨ ਕੀ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੁਮੁਖ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੁਦਰਤ ਸੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕਾ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਯੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਯੋਗ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ ਖਜੀਨਾ, ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਰਬਦੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਉਠ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਪੂਤ ਪੂਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਵਰਖ ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਵੋ ਕਰੇ ਨਾਮ, ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਤਰੇ, ਪਾਠ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨ ਦਰ ਸੁਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਰ ਪਛਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਕੇ ਸਰਬ ਡੰਡੋਲ, ਪੂਜ ਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਅਸਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖੜ ਸਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨਮ ਦੇ ਕਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਵੋ ਜਤਨਾ, ਪੁਨ ਦਾਨ ਹੋਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤਨੇਮ ਕਰੈ ਬੋ ਪਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰਜੀਵੈ, ਮਹਾਂ ਉਦਾਸ ਕਪੀ ਸਰਥੀਵੈ, ਅਗਨਮਾਇ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਨਕ ਅਸਵ ਹੈ ਵਰਖੂਮ ਦਾਨ, ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬੋਆ, ਸੰਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਸਾਧਨ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ, ਕਉ ਵੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਿਸ਼ਨਾਇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕਤ ਪਾਹੇ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰ ਤੇ ਛੁਟੈ, ਕਰ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੇਰ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ, ਜਰ ਤੋਵੈ ਬੋ ਦੇ ਨੀਤ, ਸੁਦਕਾ ਹੋਏ ਕਾਤੀ ਪੀਤ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮੈਂ ਮਹੁਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਸਤ ਬਹਮੂਤ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਤਾ ਪਉ ਵਿਆਹ, ਭਿਆਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਾਪੈ, ਵੇਖ ਨੇ ਕਗਨੀ ਬੁਝੈ, ਕੁੱਟ ਪਾਪ ਦਰਗਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ, ਝੂਠ ਨਾਹੀ ਉਪਿਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਹਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਦੈ ਸਦਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋਮੈ ਛੋਰੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਨਮਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ, ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ, ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿੰਡੈ ਬਿਮਾਨ, ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਨੀਆ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਾਤਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨ ਕਟ ਕਟ ਚੀਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਲ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ, ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਤਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਸਾ, ਦੁਖੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਥਾਉ, ਹਿਮਾਨੇ ਕੁਪਰਾ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਉਸ ਤੁਮਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਬ ਨ ਜਾਣਸ ਹੋਏ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰਮੁਖਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਪਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਵਖਾਨੀ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਨਿਆ ਰਿਆ ਨਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀ ਐਸੇ ਸੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਧੀ ਨਾਲ, ਅਸਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਵਨ ਮੂਰਤੇ ਕਵਨ ਦਿਸਤਾਨੀ,
ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਸ ਵਾਰ ਸਿਵਾਰਿਆ ਕਰ ਵਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖਸੂਤ ਵਿਰਧ ਪਿਆਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਖਸ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਰੂ ਉਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਪ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਘ ਹਸੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਪ ਕਮੋਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਸਾਤ ਵਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਤਿਰਸ ਨਤ ਸੇ ਤਿਆਗ ਸੰਗਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਲਿਹੂ ਪ੍ਰਵਿਆਪੇ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੇ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਤ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋਂਦਾ ਜਾ ਨੰਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਸਰਜਾਰੈ ਮੁਗਦ ਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾਇ ਪੂਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਪਾਰ ਰਤਨ ਪਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗਰਚੈ ਸਾ ਛੋਟ ਝੂਟ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਰ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪੁਰਾਨ ਛੋਟ ਜਾਏ ਕਿਸਕਾ ਸੰਗ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਾਹਿ ਕਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਤਾਰੈ ਤੋਹੇ ਕਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਸੁਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਪੇਕ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛੱਤ ਸੁਨਾਇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੋ ਸੁਆਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ ਗਲ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਥਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ ਸੁਨੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਲੇ ਹੂੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾ ਬੁਜਾਰ ਪੂਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕਈਏ ਤੂੰ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ਕਹਾ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਕਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਬਿਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੁਗਾ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਾਹਿ ਸੁਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਬਲੁਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਵਸੈ ਅਨਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾ ਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨੈ ਆਵੈ ਮੂੜੈ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਟ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਲੋਕ ਧਰੋ ਇਆਹੂ ਦੁਖ ਬਿਆਨੇ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਖ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੰਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਤਹਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋਟ ਕੈ ਲਾ ਗਏ ਅਨਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਸੀਜੇ ਬਿਨਾ ਵੈਪਤ ਜਾਏ ਅਸਪਦੀ ਦਸ ਵਸੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁੱਟ ਗਵਾਵੈ ਏਕ ਦੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਵੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਪੋਕਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਾਕਰ ਸੋ ਨਾ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀ ਜੈ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਓ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗੰਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਸ ਗੀਤ ਵਰਤੈ ਅਨੁਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੁਛ ਭਰ ਸਾਵ ਲੈ ਗਿਆਨੀ ਮਨ ਨੋਤ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਬੋਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਕੀ ਬਸ ਦਿਸ਼ਾ ਗਹਿ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਹੈ ਮਾਥ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੌਕਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਣਖ ਪਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਠ ਸਰ ਪ੍ਰਭੋ ਗਿਆਨ ਨੇਤ ਵਿਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਇ ਵਹੁ ਬਿਨ ਸੋ ਮਨ ਵਿਸਤਾਵੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲਪ ਰਿਹੁ ਧਿਆਨ ਦੰਧਾਰ ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇ ਟਾਕੋ ਆਕ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਕਨ ਕਣਕ ਤੁਮ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਉਮਨ ਤਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਖਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਤਰੋ ਮੋ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪ ਸੁਪਰ ਕਰਤੁਮਾਨ ਅਸਿਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰਨਿੰਦਾ ਸੁਨੇ ਮਿਥਿਆ ਪਰ ਦਰ ਪੋਹਿਰੈ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਕਤ ਪਰਤਨੀ ਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਚਨਾ ਭੋਜਨਾਨ ਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਥਾਵੇ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਵਾਸ ਲੈ ਸਵੀਕਾਰਾ ਬਿਨ ਪੂਜੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਬਿਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਰਜਾ ਸਤ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਉਪ ਸੂਚਾ ਬਿਰਤਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਨੰਦ ਮੁਖਾ ਤਾ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜਨੈਨ ਬਿਰਤਾ ਬਿਆਹ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੇ ਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਮਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨੇ ਰਾਰਤ ਦਾਮ ਤਨ ਤਨ ਕੇ ਜਨ ਜੇ ਕਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਾਨੇ ਪੀਤ ਮੁਖੋ ਕੰਡ ਲਾਵਤ ਜਾਨਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਰ ਪੇਕ ਨ ਕਾਹੂ ਪੀਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨ ਕਰੈ ਆਪ ਜਬ ਜਨਮ ਮਰੈ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਪਹਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕੁੰਜਨ ਚਨ ਪੁਰਾਤਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਸਭ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪੇ ਮਨ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤਨ ਵੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵ ਸਨੇਰਾ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਪਾਵਲੇ ਲੜ ਲਾਏ ਤਨ ਸੰਤਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਜਾਇ ਹਮੇ
नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद से सुख मंदिर तिसे तिहाए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संत सुख बसनाट पर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस रूप नानक सदा त्याग त्याग जोग जे प्रसाद पाठ प्रतंबर हटावे तिसे त्याग कर्तव्य प्रभावे जे प्रसाद सुख तेज सुई जय मना पैरता का जस का बीज है जे प्रसाद तुझ सब को माना है मुक्ता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता कर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्राप्त जब कर गय मान पावे नानक पद तिथि कर जाव है जे प्रसाद आरोप कंचन के ही ले लाओ राम स्ने ही जे प्रसाद तेरा उदार है मान सुख पावे हर हर जस कह जे प्रसाद तेरे सगल सिद्ध था के मन सरनी पर था कर प्रभु ताक है जे प्रसाद उसको न पहुंचे मन सा सिमरो प्रभु के ये प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भक्त करे ये प्रसाद अपूकन पैरी जय मन सिमरत की वारत की जय ये प्रसाद अशुभ हस्त सुवारी मन सब को कबुना विसारी ये प्रसाद बाग मिलक तनाना कोई प्रभ अपने मना जिन तेरी मन व्रत बनाये उठ बैठ सत्य तिहाई तिहाय जो एक लख है वहा नानक तेरी रख है ये प्रसाद करे पन बोधान मना पैर कर इसका ध्यान ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी प्रभ को साथ साथ सितारे ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रसिमर सदानो ये प्रसाद तेरी नीकी जा सो प्रसिमर सदा जन्नाथ ये प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नाम जस कह ये प्रसाद सुने कर नाथ ये प्रसाद देख है विस्मात ये प्रसाद बोले अमृत रसना ये प्रसाद सत्य जय बसना ये प्रसाद हस्त पैर चले ये प्रसाद संपूर्ण फल है ये प्रसाद परम गत पावे ये प्रसाद सत्य समाव है ऐसा प्रत्याग बरकत लागू गुरु प्रसाद नानक मन जागो ये प्रसाद तू प्रकट संसार प्रभु को मूल न मनो विस्तार ये प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्तुता को जाप ये प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जन मन सदा हजूरे ये प्रसाद तू पावे सात रे मन मेरे तू सा सुरात ये प्रसाद सब की गत हो नाम जाप जप जप सोए आप जपाए जप सुनाओ आप गवाए सु हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रदास प्रभु ज्याति कमल विदास प्रभु सो प्रसन्न मुस्ते मन सोए प्रभु ज्याति मातु तुम होए धर्म निधान प्रभ तेरी में आपको किसु न किन हु लिया जित जित लाओ तित लगे हरनाथ नान किन कह कछु न हाथ सलोक आगम गात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता सा जना की चर्च कथा अष्टपदि साधक संग मुख पूजल हो साध संग मर सगले को साधक संग मिटा अभिमान साधक संग प्रगटा सुज्ञान साधक संग बुझे परम नेरा साध संग सर्वभूत नवेरा साध कर संग पाए नाम रतन साध कर संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरना है कौन प्राणी नाम साध की शोभा ब्रह्मा समाने साध कर संग गोचर मिला है साध कर संग सदा प्रफुल है साध कर संग आवे वक्त पंचा साध संग व्रत रस पंचा साध संग हो सब की रेन साध कर संग मनोहर बहन साध कर संग नकद तू तावे साध संग सुखमन पावे साध कर संग माया से पिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सामीत साध कर संग महापुनीत साध संग किसो नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं हो ताप साध के संग तुझे सब आप आपे जाने साध बड़ा इनाम साध प्रभु बने आई साध के संग ना कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग वस्त्र गोचर लाए साधु के संग अजर सह साध के संग वस्त्र कान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु गए कुर्बान साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटुम्ब निस्तार है साधु के संग सूतन पावे जिस संत सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभ सुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व धान गम नान साध के संग सबल जन्म साध के संग नहीं किचकार दर्शन पेट सूत निहाल साध के संग कुल कथर है साध के संग नर प्रहर है साध के संग यहाँ वहाँ सुहेला साध संग विचरतर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न व्यर्था जावे पार ब्रह्म साध हृदय नान कुदरे साध सुन स साध के संग सुनु हर नाव साध संग हर के गुण गाव साध के संग न मन ते विस्तर साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लगा प्रमीता साधु के संग कटकट जीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत पे हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान साध मिटे संजोग साध की महिमा वेद न जाना जीता सुना तीता व्याख्यान है साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा नहीं प्रभूत साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा व्यंत साध की शोभा उच्च से ऊंची साध की शोभा मूंछ से मूंछी छ
साध की शोभा साध बने आए नाम साध प्रपीत न पाई। तलो मन साचा मुख साचा सोए अवरना ते कह एक दिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अस्पदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कुसो। ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह धीर जेक जीव सुधा को कूद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जीव पाप का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तार ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्चे उच्चा मन अपने है सब पे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रव्यास करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ नस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर पुकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही सुंदा ब्रह्म ज्ञानी ले ताप्त बंदा। ब्रह्म ज्ञानी को सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के अवस्था प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सत्यागत ब्रह्म ज्ञानी अंग भूत त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद। ब्रह्म ज्ञानी दुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का भीतर ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को पूजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माँ है। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने फिर ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाया दाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है ब्रह्म ज्ञानी की कत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का अनाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी आप नंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। सलोक पुरधार जो अंतर नाम सर्म पेक है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक ऊ अपर सगल निस्तार है। अस्पदी मिथ्या नाही रचना पर समान मैं प्रीत निरंजन दर्श। पर प्रिय रूप न पेख है नेत्र सात की टहल संतंग हेत। करना सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपको मंदा। गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बात न मानते डर है। इंद्री जित पांच दो रहत नान कोट मदे को ऐसा पर्स। वैष्णो सुज ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया से हुए पिन कर्म करत हो ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहु फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भक्त कीर्तन संग्राच है। मान तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवर नाम जपावे नान को वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवान भगत का रंग सर्व त्याग दुष्कासन। मानते विनसा सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म। सात संग पापा मल को वै तिस भगवती की मां सूतम हो वै। भगवान की टहल करे नितनीत मन तन अर्पय विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म शोध। राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे। वेद प्राण सिमृत पूजय मूल सुख में जाने सूर चो वरना को दे उपदेश। नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्प को ज्ञान चो वरना में जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत हुए सत्संग पावे जन कोय। कर कृपा अंतर उधार है पशु प्रेत मुग्ध पात्र को तार है। सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहु जुगत कितना न पाई है धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया दुर्कर्म। जिसके मन पर ब्रह्म का निवास जिसका नाम सतराम दास। आत्म राम कृष्ण नदरी आया दास संत न पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान सोदा दर गह प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सरसो जी पर है। सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास। सब किया गया आत्म हिताब है जीवन मुक्त कहाव है। तैसा रक्त तैसा शोक सदानंद तैना वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी विखाटी। तैसा मन तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान।
जो बरताए सही जुगत नानक उबरु कहिए जीवन मुख पार ब्रह्म के सगले ठाव जित जित कर राखे दस तिन नाव आपे कर्म क्रम जो प्रभावे कोई पनोग पसरो आप हो अंत रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी माते तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नान पे निहाल सलोक पुस्तक करे अनेक जन अंत न पारावार नान प्रचना प्रवृति बहु विजन प्रकार अस्पति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट कबीसर होते कई कोट आत्म ज्ञान तारे कई कोट कब का विचार है कई कोट नत नाम त्यावे नान करते कांत ना पाव है कई कोट पे अभिमानी कई कोट अन्न ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिकात्म निकोर कई कोट पर दर्प को विखरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया त्रमाय कई कोट प्रदेश प्रमाय जित जित लाभ हो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजी रस भोगी कई कोट पंक्ति सर्प पाए कई कोट पात्र विघ्न विजाय कई कोट पवन पानी वैश्वंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यल सूर्य कतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर सकल समग्री अपना सुतार नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस्थान सात कई कोट वेद पुराण सिमर तरसास कई कोट किए रतन सुमंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीव कई कोट गिरी मेर सुवर्ण सही वह कई कोट जाके नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत शुक्र में गाज सात ते नेर सबूते दूर नानक आप लब त्रिया प्रभूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरे कई कोट बोझो नहीं फिरे कई कोट बैठक दिखाए कई कोट काले तक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिन्ह जय जय पाणा तय तय राखे नानक सब किस प्रभ के हाथे कई कोट पे वैरागी राम नाम संग तिन लागी कई कोट प्रभ को जनते आत्म पर ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यार तिनको मिले प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसान नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खाणी अरकंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुग की न विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा कई कंकार कई कोट कीने बो पांच प्राप्त हुए ब्रह्मा समाप्त था कांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रस होए कई कोट पार ब्रह्म के दास किन हो बता तुम प्रगात कई कोट तत् की बीते सदा निहारे कोने तेरे कई कोट नाम रस पीवे अमृत पे सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुन गावे तुमरा सुख सहज समाव है अपने जन को साथ साथ समारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नान किस बलिहार न जल तल में हिल सोए अस्पति करण करावन करना जो जो तस्पावे सोए हो इनमें तब तापन हारा अपना किस पारा बारा हुक्मे धार अदर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अंतरंग प्रकार हर कर देखा अपनी वड्याई नान सब मैंने असमाई प्रभावे मानु गत पावे प्रभावे पात्र त्रावे प्रभावे बिन साथ तेरा के प्रभावे हर गुण पाख है प्रभावे पत सुधार है आप करे अपन विचार है दुहा त्रिया का आप स्वामी के लय दीक्ष अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अब न आवे कहो मानुक से क्या हो आवे जो छुपावे सोई करावे इसके हाथ हुए तब सब किचले जो छुपावे सोई करे अन जान पिक्या में रचे जी जान तापने आप बचे परमे पूला दे दिस्तावे निमक माए चार कुंड फिर आवे कर कृपा जिस अपनी परती दे नानक ते जन नाम मिले किन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म दीव निवाज या का दृष्ट कछु न आवे तिस सत्काल दे तिस पुक्तावे या को अपनी करे बख्शीस ताकल एक कना गणा जगदीश जियो पिंड साहब तिसकी रात कर कट पूर्ण प्रेम प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाई साथ कन क्राम सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जी जो छुपावे सोई पुन थे कबू उच नीच में बसे कबू सोग हर दंग हस है कबू नींद चिंद व्यवहार कबू बकाश प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नान काप मिलावन हार कबू नित कर बो फांस कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हो वह बड़ राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू आप कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रभु राखे तेवी रहे गुरु प्रसाद नान सच कह कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मोन तारी लावे ध्यान कबू तड़ तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीठ संग जी आनक जवन परम है परमिया नाना रूप जो सुभागी दिखावे जो प्रभावे तिवे न चावे जो पावे सोई हुए नान दूजा न कोय कबू सात संग त्यो पावे उस स्थान ते बहु न आवे
अंतर हुए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम से एक रंग सदब से पार ब्रह्म के संग जो जल में जलाए कटाना से ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ के सतकुर्बान सलो सुखी वसै मस्कीने आप निवार तले बड़े बड़े अहंकार या नान गर्भ गले अस्पति जिसका अंतर राज विमान सो नरक पाति हो स्वान जो जाना में जो बनवान सो हो त्रिस्ता का जान आप सो कर्मवंत कहा वह जन्म मर बोजोन प्रमाव है तन फूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसाव है नानक यहाँ मुक्ता के सुख पाव है धर्मता हुए कर कृपाव है किरण समान के संग न जावे बोलत कर्मान कुपर करे आस पर पवित्रता को विनाश सब त्याग जाने बलवंत किन में हुए जाए सुमान इसे न बदय आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जा का मिटा विमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरसारे अनंत तपस्या करे अहंकार नरक सुरख फिर फिर अवतार अनंत यत्न कर रतन नहीं दरवे हर दरगह को कैसे गवे आप को जो पुला कहावे तिसे पुलाई निक न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कौन आनता की निर्मल सोए जाब लग जाना मुझसे कुछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जाबे जाने मैं किस करता तब लग घर जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्राप्त कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नान कौन छूटे सहत कटेला कूटता वह तृप्त ना वह माया पाचे पावे अनंत भोग विख्या के करे न तृप्ता वह खत कप मरे बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ वित्त सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बट बाकी किसे प्राप्त होए कर्ण करावना पे आप सदा सदा नान कर जाप कर्ण करावन करना हार इसके आज का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होया पे आप प्रभ सोए जो कुछ की नसु अपने रंग सत्य दूर सब कह संग बूझे देखे कर विवेका पे का पे अनेक मरा न मिल सह न जाए नानक सदी रे समाय आप उपदेश समझे आप अपरच सबके साथ आपकी नो अपन विस्तार सब कुछ उसका होकर न हार उससे पिनकाओ के चोए शांत नंतरी कैसोए अपने चलता आप करना हार कौत कर रंग पार मन में अपन अपने माँ नान कीमत कहना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने बख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मत किने बिरले जीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर पार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी अटकट सुनी सरवन बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत।

गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नान की का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन अमलेक लाल रतन, तुम समाप्त हो तो दारा तरलो कैनिस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन अंत करे प्रभु गा जय। प्रकटे गोपाल महत के माथे नान कुदरे तिन कै साथे, कर्म जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर पै सब रे नम्रत नाम साथ संग लैन, सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्णो सेव की सेव। आप जंजाल विकार तेरे तेरा नाम सुन रचना कहते, कर प्रसाद दया प्रतारी नानक ने भी के पमारी। प्रभु यूसुफ करु संत मीत, साफ जाने का कर जीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम। जिस मन मस सो होत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रकट सब लोए। सब तुझ पाए स्थान पर न हो वह आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए नान जिसे प्राप्त होए। केम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध, विद्या तप योग प्रत्यान ज्ञान से सुत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मल सर देवदास, सुंदर चतुर तत्व का बेता संदर्श की एक दृष्टिता। ए फर्क जन कह मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने, ए हो निदान जप मन कोए, सब जुग में ताकि गत होए। गुण गोविंद नाम सुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतान केवल हर नाम गोविंद भगत का मन विश्राम। कोट प्राथ सत्संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै, जा कै मस्त कर्म प्रपाए।

गुरु अर्जन साहिब जी इष्ट शब्द राही प्रभु दी प्रेमा भक्ति दे फल प्राप्त करन दी विधि दा व्याख्यान करदे हन। आप जी फरमाउंदे हन कि हे प्रभु, जिस मनुख दे मन विच तेरे दर्शन दी तांग पैदा हुंदी है, ओह माया वलों वैरागवान होके आत्मक अडोलता दे आनंद विच टिक्या रहिंदा है।

0: अपने सेवक नानक दी भी अरजोई सुन। नानक नू अपना सिर्फ नाम हिरदे विच बसा लई दे।
1: हे प्रभु, जिस मनुख दे मन विच तेरे दर्शन दी तांग पैदा हुंदी है, ओ माया वलों बैरागवान होके आत्मक अडोलता दे आनंद विच टिकया रहे।

श्रोता जन सच हमेशा कौड़ा हुंदा है। आप जानते हो कि सिक्खी सिद्धांत ब्राह्मण वादी कर्मकांडा उपर करड़ी तकड़ी सट मारदे सन अते जात पात दी काणी वंड नूं मुढ़ों रद्द करदे सन। वर्ण वंड दे सताए अखौती शूद्र सिक्खी दे जात पात विरोधी सिद्धांतां कारण धड़ा धड़ सिख बनने शुरू हो गए। सिक्खी दी प्रफुल्लता कारण हिंदुआं विचों उच्च जाति ते खासकर ब्राह्मण सिक्खी लहर दे सख्त विरोधी बनने शुरू हो गए। जात अभिमानी ब्राह्मणा ने राज दरबार विच बैठे कट्टर ब्राह्मण महेश दास जिसनों आपां बीरवल दे नां नाल भी जानते हाँ राही अकबर कोल गुरु जी विरुद्ध शिकायतां दा दौर लगातार चलता रहिंदा।

जहांगीर खुसरो दी बगावत कारण बहुत गुस्से विच सी। इसे कारण उसने खुसरो दे सब हमायतियां नूं सख्त सजावां दित्तियां। मौके दा फायदा उठांदिआं शेख अहमद सरहंदी दे इशारे ते शेख फरीद बुखारी ने 23 मई 1606 दे नेड़े तेड़े एक झूठी शिकायत गुरु अर्जन पातशाह बारे पुछाई कि गुरु जी ने गोइंदवाल विखे बागी खुसरो दी मदद कीती ते उसदे मत्थे ते तिलक लगाया।

गुरु जी खिलाफ की शिकायत का जहांगीर के मन से बड़ा प्रभाव पिया, क्योंकि एक तो यह शिकायत उसके सब तो भरोसेयोग ते विश्वास पात्र दरबारी शेख सूद बुखारी मुर्तजा खान ने की थी। दूसरा यह शिकायत गुरु जी नू खुसरो दा हमायती सिद्ध कर दी सी, अते खुसरो दी बगावत तो खफा जहांगीर खुसरो दे हरेक हमायती नू सख्त सजा देने दे हक विच सी।

0: जहांगीर दे मन ते इस गाय दा जो प्रतिक्रम होया ओ उसने अपनी स्वैलिख सोच के जहांगीरी विच इस प्रकार कीता है।
1: गोइंदवाल विच जो ब्यास नदी दे किनारे ते है पीरां बजुर्गां दे भेस विच गुरु अर्जन नाम दा एक हिंदू रहिंदा सी। उसने बहुत सारे भोले भाले हिंदुआं नूं सगों बहुत सारे मूर्ख ते बेसमझ मुसलमानां नूं भी अपनी रहत बैत दा श्रद्धालू बना के अपने बलि ते पीर होण दा ढोल बहुत उच्चा बजाया होया सी।
0: लोक उस नूं गुरु कहिंदे सन। सारियां पासियां तों फरेबी ते ठगी पसंद लोक उस कोल आके उस उत्ते पूरा एकाद अते श्रद्धा दा इजहार करदे सन। तीन चार पीढ़ियां तों उना दी ए दुकान गर्म सी। कितने समय तो मेरे मन विच ए ख्याल आउंदा सी कि झूठ दी इस दुकान नूं बंद करना चाहिदा है जां उस गुरु नूं मुसलमानी मत विच ले आउणा चाहिदा है।
1: अगे लिखदा है कि इना दिना विच ही खुसरो ने ए दरिया पार कीता। इस जाहिल ते हकीर खुसरो ने इरादा कीता कि ओ इस गुरु दे नजदीक होए। उसने गुरु दे रहन दे डेरे ते अपना पड़ा कीता। ओ इस नूं मिलिया ते कई मिठियां होईयां गल्लां उस नूं सुनाईयां अते केसर नाल एक उंगली उस दे मत्थे ते लगाई जिस नूं हिंदू तिलक कहिंदे हन अते चंगा शगन समझदे हन।
0: लिखता है कि जद ए गल मेरे कन्ना विच पई तद मैं अगे ही इना दे झूठ नूं चंगी तरह जानदा सी। मैं हुक्म दिता कि उस नूं हाजिर कीता जावे अते उसे घर घाट ते बच्चियां नूं मुर्तिया खां दे हवाले कीता जावे अते उसका माल असवाब जब्त करके हुक्म दिता कि उस नूं सियासत अते यासा बा सियासत बा यासा रसानंद दे सख्त कानून तहत कतल कर दिता जावे।
1: इस सुपने नूं पूरा करन लई जहांगीर ने सतगुरु साहिब जी दी गिरफ्तारी दा आदेश जारी कीता अते मुर्तजा खान नूं हुक्म दिता कि गुरु अर्जन दा सारा माल असबाब जब्त कीता जावे।
0: कटकर के अंतर जानन वाले सतगुरु जी पहला ही जानते सन कि अगे कैसा समा आ रहा है। समय दी नियत नूं समझदे होए गुरु जी ने सिखां नूं संबोधन करदे होए फरमाया जिस दी असली लिख बंसावली नामा विच इस तरह लिखे मिलदे हन साहिब सरबत पासों विद्या होए टुरे सद हर गोविंद नूं टिक्का दिता करते विद्या पए साज चलण दा किता।

श्रोता जन भाई गुरदास जी की इस बार का अर्थ है कि भावे गुरु अर्जन साहब जी तत्तियां लोहां ते बैठे रहे पर ओ इलाही समुद्र विच निवास रखते हैं जिन्हें मच्छी दरिया के पानी विच लीन होके रहिंदी है।

हे भाई, इस सदा कायम रहने वाला हर नाम धन गुरु की शरण पै के हासिल करो। परमात्मा वालों वर्ती रजा अपने भले वास्ते जान के सहा।

हिंदुस्तानी सरदार की तारा तेंसा मुंजा है। गवर्नमेंट नूं चलाउण दे सारे हक अपने हाथ विच लै लै। इस षडयंत्र विच उसका सब तो बड़ा सलाहकार भी उसका छोटा पुत्र संजय गांधी, जिस नूं अगला प्रधानमंत्री बनाउण दी

0: 6 जून की रात 11 बजे के करीब सानू मिलिट्री कैंप विच ले जाया गया। साडे पहुंचन तो थोड़े समय बाद ही गोलियां चलन की आवाज सुनाई दी। असी सारे वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पे। असी सारे एहो सोच रहे सी कि कंपलैक्स अंदर तां बच रहा सी पर हुण नहीं बचते। पर दूजे दिन 7 जून सवेरे पता लगा कि दो नौजवान कंध टप रहे सन, उन्हां नूं गोलियां मार के मार दिता गया है।
1: पावे बहुत कार्यकारी सेवादार अपने बचाव के हर वसीले की भाल विच सन, पर पंच दर्दी की चिंती के मर जीवड़े इस सर्व उच्चतम जान नालों में प्यारे पवित्र स्थान की राखी लिए तने बैठे सन। इन्हों का आगू सिखा विच प्रमाणक सेवादार जरनैल सिंह खालसा ने गुरु भाणे नूं मनदे हुए 6 जून नूं शहीदी प्राप्त की।
0: सरवण करो ये श्रद्धांजलि उस बिछड़िया रूहां नूं

अपनी सिपा सलार रानी की ललकार सुन के डिगे हुए हौसले बुलंद हो गए। दोबारा फिर लड़ाई शुरू हो गई। पटियाले वाले मरहटियां नाल सारा दिन जाना तोड़ के लड़े। जदों रात पै गई तां सिंघां ने राणी नूं कहा, वैरी ज्यादा हन, सानू पटियाले नूं मुड़ जाना चाहिदा है। अपने वीरां दा मनोबल उच्चा करन वास्ते भैण ने फिर हल्लाशेरी दित्ती। बहादुर साहिब कौर ने कहा, जो मैदान फतेह करन तों पहला पानी दा घुट भी पीवेगा वह मेरा लहू पीवेगा, जो शस्त्र सुत्तेगा वह मेरी पत्त ला के सुत्तेगा। इस दिल कंपाऊ गल नूं सुण के सिंघ अंतले साह तक लड़न लई मजबूर हो गए। थकावट नाल चूर चूर होए सुत्ते पै दुश्मन उत्ते सिंघां ने आखिरी हल्ला बोल दिता। इस तरह बहादुर साहिब कौर ने पंजाब की पत्त बचा ली। खालसे की इस जित का प्रोफेसर मोहन सिंह ने जो वर्णन किया है उसनु चरण सिंह आलमगीर का ढाडी जत्था, जीत सिंह आलमगीर, वलैत सिंह मियोवाल, गुरपाल सिंह सरंगी मास्टर हे इओं बयान करते हैं।

परम सत्कार योग गुरु स्वारी सात संगत जीओ सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी ने अपार मेहरामत की है, जो अपने सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब तो अमृत वेले हुक्मनामा बख्शिश किया है। अज का हुक्मनामा साहब पंचम पिता महाराज जी की रचना तो उचारण किया हुआ राम कली राग विच सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता महाराज जी दे अंग नंबर 885 ते सुभाए पांच। अज असी कल की तरह दो किस्सों विच विचार करके साहब की वड्याई प्रारंभ करनी है। पहला ध्यान करिए जो कल रोज आने वाले दिन प्यारो निरंकार ने बहुत वड्डी कृपा की सी, जिस दिन पहला प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब का हरिमंदर साहब होया सी। सतगुरां तो पहला भी निरंकार अपने वलों पैगंबर महान पुरखां नूं जगत की कल्याण से भेजते रहे, उन्होंने भला किया ते चले गए। पर 1469 नूं निरंकार आप गुरु नानक साहिब जी दे रूप अंदर जगत से आए ने भला करन लई। जदों आए कितना माण कै निरंकार दे घर जो कुछ वरतदा कै निरंकार दे घरों पाक पवित्र बाणी सतगुरां ने अपनी रचना तो उचारण कीती ते अपनी हयाती विच उन्हां ने कलम तो आप लिखवाई। दुनिया के इतिहास विच ए किसे होर कौम मजहब दे किसे ईमान नहीं आया। प्यारो कि सतगुरां ने कृपा कीती तै साडे उपर, फिर कमाल की गल निरंकार दे घरों ये जो पवित्र बाणी आई, इस नूं कई बार इंज कह लिया जांदा है भई देखो सतगुरां नूं सच्चे पातशाह जी नूं जां भगतां नूं पट्टां नूं ये पवित्र बाणी उन्हां ने उचारण कीते। बहुत चित्कार अजा शब्द सी जदों भाई लालो जी ने बेनती की गरीब नवाज, जदों तुहाडी रचना तो बाणी सुणदे आं तुहाडी बाणी मिठी बहुत लगदी सानूं। भाई साहब जी दे जवाब विच सतगुरां ने सम्राट सच्चे पातशाह ने एक बचन कहा है, निरंकार पर गुरु के प्यारे कदे भी अपने आप नू निरंकार गुरु इस दास दे रूप विच सतगुरु जी बयान करदे ने। प्यारे जदों भाई लालो ने कहा ना तुहाडी बाणी बहुत मिठी कुछ होर सुनाओ, ते साहब कहन लगे भाई लालो साडी नहीं ये निरंकार की बाणी जिवें आउंदी है असीं उसे तरह अपनी रचना तो उचारण करके सुनाने हाँ। सतगुरां दे बचन ने ना जैसी मैं आवै कसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, जिवें कसम की बाणी आई उस तरह बयान किया। हुण इत्थे भी तुसीं पिछे दीदार कर रहे हो, बोर्ड ते एक पंक्ति लिखी है गुरु के कीर्तनीय उस नूं अज भी गा के गए ने हरिमंदर साहब पिछले कई दिनों तो, ये पंक्ति तुहानू सुनाई जा रही है पर मैं भी सुनान लगा तुहानू उहदा कोई खास कारण है। तुसां ने सेवा लई बिठाया इस लई उह धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, याद है न पंक्ति सारिआं नूं। पर तवज्जो करो दुनिया दे अंदर पूरे संसार ब्रह्मांड दे अंदर की गल कर लगा वा, जेड़ी भी कोई चीज साढ़े तक पहुंची है ना वो कल्ली नहीं कदे आएगी, वो नाल चिंता ते फिकर लेके आएगी। भावें वो सानू तुहानू किन्नी भी क्यों ना अमोलक ते प्यासी लगती होवे, पैसा नहीं सी पैसा घर आया पर नाली चिंता लग गई पे इनू संभालना किवें, तेरी दुरवरतों ना हो जावे खुश ना जाए। धियां पुत्र आए कर बहुत प्यारी दाते
ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਪੜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਵਿਆਹਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜ ਪਾਪ ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਆਉਣ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਰੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਧੁਰੋ ਬਾਣੀ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਏ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਹੀ, ਜੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਾਨ ਰਹੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਟਾਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ